बहुरि अवतार। अष्टपदि संत का दुख निहार जा, घटा संत का दुखन जमते नहीं, छुट्टा संत का दुखन सुख सब जाय, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखा न खोए, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करा, नानक संत संग निंदक भी तरा, संत के दुखन ते मुख भवा, संतन का दुखन काग जो लवा, संतन का दुखन सर्प जोन पाए, संत का दुखन तिगत जोन करमाए, संतन का दुखन तृष्णा में जला, संत का दुखन सब को चला, संत का दुखन तीस सब जाए, संत का दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत भावे ता ओ भीगत पाहे, संत का निंदक महा तताई, संत का निंदक टिक न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तहीन, संत का निंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्वरो, संत के निंदक को सदा बिजो, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी कैसा का निमित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी जन्म मरै, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुखना सुख ते टरा, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटा, संत का दुखी कितक आज ना पहुँचा, संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस नाहे, आपन भी जापे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे ता लय उबार, संत का दुखी ऊँ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पाप की इधर नहीं त्रापा, संत का दुखी छुटा केला, ज्यों बुआर तिलखी तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म तेरा, संत का दुखी सब मिथया कैद, किरत निंद का तुरही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए, संत का दुखी सदा सखाइया, संत का दुखी ना मरा ना जीवाइया, संत के दुखी की पुजे नासा, संत का दुखी उठ चलै निरासा, संत का दुख ना त्रिष्टा कोई जैसा भावै तैसा कोई होय पया, कितना मिठा कोई नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसकी करना हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्राप्त की उस्तद करो दिन रात, इसी त्याव सास गिरा, सब कछ वरता तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया, अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कहा विचार, जिसनो कृपा करै तिस आपन नाम दी, बड़ भागी ना।

राष्ट्रपति जब कार्य काशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद ता बैर विरोध किसंक माद, जब इसका वर्ण कह न जापद ता भरसो को किसे व्याप्त। जब आपने आप आप पार ब्रह्मता मोह का किशोत परम आपन खेलिया, वर्तीजा नान करना हार न दूजा। जब होत प्राप केवल तनी ता बंद मोत को किसको गणी, जब एक हर आगम पार तब नर सुर को कौन अवतार। जब निर्गुण प्राप सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जोत धारा तब कवन निडर कवन कत। आपन चल त्याग करना हार नान ठाक रगम पार, अवनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण को कां बनासन। जा पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो के सोए, जब अवगते गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किश पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कनबंधन बांधे, आपन आप आपी चर जा नानके आपन रूप आपी पर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तै बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल सिदर लगत को की, जा जो स्वरूपी जो संग समावै तै किसै भू कवन तृप्तावै। करन करावन करन हार नानक करते का नाहि सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे प्रवीन तै बेद तेव कहा को चीन, जब अपने आप आप उतारा तो सगने अपसगन कहा विचारा। जै आपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हूँ आप। जै छल छेद भेद समाया ऊहा किसे हे व्याप्त माया, आपस को आपे आदेश त्यो गुणकार ना ही प्रवेश। जै एक एक एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागै चिंता, जय आपन आप पतियारा तै कौन कथा कौन सुनना हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा, जय आप रचियो परपंच का त्यो गुण मै किन्नो विस्तार। पापुन तै भई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पै भार। दूख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखा खेल संकोचा। तो नानक एका जा अवगत भगत का आप, जा पसरा पसार संत प्रताप। दुहपा का पे धनी उनकी शोभा हूँ बनी, आपे कौतक कर अंध चो जापे रस भोग निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेस

बचाए। कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अनकोशय करता। श्री अस्तोजा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय आरद सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रविवार तीर सत दुर्भ ग्रंथ सुधार इत श्री चरित्र रूप खयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच

कियो रघुवर कथा प्रसंग दोहरा। साद असा जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल।

कई कोट खंड अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत कई नवस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट की नवापात प्रद ब्रह्म समात ताका अंत न जाने को आप आप नान प्रास हो, कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो आत्म प्रकाश, कई कोट तात की बीत सदा निहार है कुन यत्र, कई कोट नाम रस पीव हमर पय साध साध ही जीव है, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रास सुख सह जो समाव है, अपने जन को सास सास समारि नानक वही परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रावी कह, दूसर नाही कोई नानक तह बलहारण जाल थल महिगल सोया पदी कर्म।

पूजन सदा रोग जो मंद्र काओ थम थमन त्यों गुर का शब्द मन स्थमन ज्यो पा खाण नाव चढ़ तर प्राणी गुर चर लगत नहतर ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन दीख मन हो विकास ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तन संतन की पाए छा तूर नानक हर दोचा पूर मान मूर्ख काहे बिल लाई है पूर्व लिख का लिखिया पाई है दुख सुख प्राप्ति वन हार अवर त्याग तू तिसै चतार जो कछ करे सोई सुख मान पुला काहे फिरया जान कान बस थाई तेरा संग लवट रही रास लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहि नानक पद सिद्धि कर जाहि जिस वखर को लैन तू जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संदन कर पाया ताजा बमान लिख मन मोर राम नाम हृदय महतोला दिखियो संत है संग चाल वर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दर गए सोए हुआ पार बल्ला वा पार नानक ताक सतबल हर चन साध के तोये तोये पियो अर साधु को अपना जीव साधु की दूर करो इसना साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा उड पागी पागी सा संग हर कीर्तन गाई अनक बिंग साधु रख हर गुण गाई अमृत रह चाख उठ गही संत है तराया सर्व सुख नानक तिह पाया अमृत कहो जीवाल नर भूख कहो देवता आधार सर्व निधान जग दृष्टि माहि गुरु लिख का लह ना पाहि साब के तिस का उह करना जोग तिस बिन दूसरवा न होग जाप जन सदा सदा दिन रहनी सब तीज निर्मल करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजा निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिह जाना हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिया तिह लुए जाके हृदय एकुह सच करणी सच ताकि रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साच आकार सच वरत साचा पा सार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सुभ जन सच सुमत श्लोक रूप नरीख नरंकिश त्रिह गुण ते प्रापिन तिसे बुझाई नानक अज सुवै सुप्रसन्न अष्टपति अविनाश ब्रह्मान महराख मान किन्दु प्री त्याग तिस्ते परा नाह किश कोय सर्व नरंदरी को सोया पि बिना पिदान गहर गंभीर गहीर सुजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा नधान दयाल बख्शंद साध तिरग चरण पाव नानक मन अनराव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण परन जाक नेत्र फोर उसका मंत्र ना जाने होर अनद रूप मंगल साध जाक सर्व थोक सुनी है कर ताक राज महाराज योग मह जोगी ताप मह तपी सरा कस्त मह भोगी ते आई भगत सुख पाए नानक तिह पुरख का किरे अंत न पाए जाक लीला की मेत ना सकदी महारी अवगाही पिता का जन्म के जाना पूत सकल बुरै अपना सूत समात ज्ञान ध्यान जिन दे जन दाहना त्यावह से तिह गुण मह जाग प्रमाई जन्म मरै फिर आवा जाय ऊच नीच तिस के स्थान जसा जनाव तह नानक जान नाना रूप नाना जग रंग नाना बेह करै करंग नाना वेद किन विस्तार प्रभु नासी एकंकार नाना चल करी खिन वाही पूर रह पूर्ण सब ठाई नाना वेद कर बनत बनाई अपनी किमदा विपाई सब घट दिसगी सब दिसगी।

जेस सोभा कौ करह भली करणी सा सोभा भज हर की शरण अन क्यों पावि रोग न जाए रोग मिटे हरब खतलाई सर्व निदान में हर नाम निदान जब नान दर्ग परवान मन प्रबोधा हर कनाय देह देह ताव ताव ठाय ताक विघ्न न लाग को जागर दा बस हर सोए काल ताति ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पाओ बिन सब पूर्ण हो आस भगत पाया तुम प्रगाह तीर्थ कर जाय बस अवनाशी का नान काट जम फासी तात विचार कह जन साचा जन्म मर सुखा चुका चाया गौन मिट प्रभु शिवा त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म काधार हर हर सिमर प्राण आधार अन पाव न छूट नारी सिमर सा सत वेद विचार हर की भगत कर मन लाई मान वंशत नन भर पाई संग चाल तेरा तना तू क्या लपटाव मूर्खा मरा सतबीत कुटाम्ब हर बन तन ते कह तुम कर सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कौन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा टम फै झूठ पा सारी जिंदी जाना बेगाना ना बसाना पुछताना गुरु की मात तू आने भगत बिना वाडू बस आने हर की भगत।

एक उपसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आव कथाव सुनने हारा पही का विस्तार जानत पावन सृष्टि उपाय आपना पाण लय समय तुम तो बिन नहीं किसे आपन सूत सब जगत पुरे जाक प्रभु जी आप जय सच नाम सूर्य जन पाय सो सम दर्शी तद कवि नानक सर्व श्रेष्ठ का जीता जी अजंत्र सवता कह दीन दयाल अनाथ पुनाश जिस राखत हुए न मर सो मुआज मन हो बसर तिहताज अवर कहाँ को जाई सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाक सब हाथ अंतर बाहर जान हो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बल हर पूर्ण रह पूरे दयाल सब उपरोध कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे व्याप प्रात पाल जीन वह पात जो जो रचियो सो तिसे हित्यात जह पावत हलय मलाय भगत करे हर के गुण गाय मारे अंतर विश्वास कर माने करना नानक के जाने जान लागा हरि का नाय तिसकी आसन वृत्ति जय सेवक और सेवा बनाय कंबूज परम पद पाए ते ऊपर नहीं विचार।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होय अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन लिखे तिसर नाहे जे फरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ वेण नावै नाहीं को थाओ कुदरत कव।

में रजाय गृही महस्मस्तुल जुबाह के साय विक्रह हैं के नरकुम प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सर्वुल गुवान हैं बेसुर वन हैं तमाम तमीज हैं स्मस्तुल अजीज हैं परम कर्म ईश है स्मस्तुल अधीश है देसुल अलेख हैं बेसुल अपेख हैं जिबिनुल जमा।

करता है। अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पवपंजन है, अरगंजन।

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिद्धान के देख फिर घर जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे हो मातु को न देखे प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हो ते एक रत्ती बिनेक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनुभुतंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कूदत पौन की गौन को जात नवारे भारी भुजान के भूप भले बदन आवत शीसना जात विचारे एते पये तो कहाँ पये भूपद अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब दे दिशान को बाज ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसद ही हराज हजारे भूत भविख भगवान के भूपत कौन गनै नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दुम दान सुसंजम नेम अनेक विशेखै वेद पुराण कतिब कुरान जमीन जबान सुबान कपेखै पौन अहर जति जत धार सबै सुविचार हजार के देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साजना दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हरे न हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माध्यम तंगन मान मलैंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बहन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बढ़े बरियार विचार है सार के धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माध गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहब श्री सब कोसर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया दानम दे फनिंदन साजर भूत भविख भवंज पैंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थप पैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सबै अब लोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंद्र राधव जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोड स्नान गजात गदान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात अंत।

प्रजा जिन आप सवारी शिव कुन को सब गुण सुख दियो सुतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला सुन दुन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधु।

माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलबिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अष्टुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेलन सुनै गुंग जोई।

मूर्ख अंधे पत गवाई विड़ना वे किस थाए न पाई रहे बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछुतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए।

0: काची पीत।
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतत भव मूच।
0: बहुत सियाणप जम का पो व्यापे, अनेक जतन कर तृष्णा त्रापे।
1: देख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट पाव दरगह नहीं सिजे।

0: जे प्रसाद असब हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना।
0: जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत तिस है ते आई।
1: तिस है ते आए जो एक लखे इहां उहां नानक तेरी रखे।
0: जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।

0: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर भुले,
1: साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन,
1: साध के संग न कतहु तावे, साध संग अस्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।